जो सतगुरु सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई। तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास।

कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुध जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तो निश्चल करता सोई तुध आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै है सो होई तुध आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुध आपे सिरज सब गोई।

तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख्या है जान है सोए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सबहिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहिले हो उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा।

जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिया हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहे।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहु हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो, घट घट के

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीठ पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड काछ भेद न जानत महान देव कहु कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बाहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्यय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन कोशय करता। श्री अस्तुजा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार चौ पई को कहै, चौ पई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तेन कहिजै। भाद

पौड़ी जिथै तू समर्थ, जिथै कोय नाहे उथै तेरी रख, अग्नि उदर माहे। सुनकै जमके दूत नाए तेरै छड़ जाहे, भौजल बिखम असगाह गुरसबदी पार पाहे।

पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पन वडाहे कर डंडौत पन वडाहे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडाहे ज्यो ज्यो चलै चुबै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख

कहे काट काट काट काट तू ही तुम्ही मोहिना। सतगुरु जी कहंदे ने मेरे सच्चे गुरु ने इन्हां अखियां दे नाल इन्हां लोइनां दे नाल ये वाहिगुरु आप जी दे दर्शन करा दिते ने ते हुण आप जी मैनूं इस लोक विच परलोक विच हर जर्रे दे विच नजर आउण लग पए हो। गुरु हे दिखायो लोए ना इत है उत है काट काट काट काट तू ही मोहिना। और इस गल दी समझ आ गई है कारण करना तारण करना एक है सोहेना। हे सोहे प्रभु तुसी आप ही सारे जगत दे मूल करन वाले हो ते सारी सृष्टि नूं सहारा देण वाले भी आप ही हो। बस इको बेनती है संतन प्रसन्न बलहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहेना। नाम जपन वाले भी चरणशो चाहिदी है महापुरशां दे दर्शन चाहिदे ने। इसे गल विच ही मैनू चैन है मैं सुख भी नहीं सौ सकता हाँ संतन प्रसन्न बलहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहेना। पावन शब्द गुरु है दिखायो लोई।

आप नारायण कला तार जग में परवर्यो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दिपायो जह सिख संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कौल निमल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारण तारण जन्म

उबर है छोड़ जम पर की लिख है भगत पाए पर पूर हृदय उचरे करता रै गुर गहु आर दरियाओ पलक डुबंत तारे नानक कुल निमल अवतरियो गुण करता रै उचरे गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिदर पर हर परे नानक कुल निमल अवतरियो गुण करता रै उचरे गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिदर पर हर परे।

0: ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध
1: आखे दानो फाके देख आखे सुनर मुंजन से
0: किते आखे अखन पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे
1: किते होर करे ता आख न सके के ही के
0: जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए
1: जेको आखे बोलेगा ता लिखे सिर गावा रा गावा
0: सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले
1: नाथ ने एक संख्या किते वावन हारे
0: किते राग परिस्यो कहीं किते गावन हारे
1: पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे
1: ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे
0: गावे इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले
1: समाधि अंदर गावन साथ विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावे
0: मोहनिया मनमोहन सुरगा मच पयाले।

0: जापे जाए।
1: धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म,
2: पवन पानी वैसल कर केते कान महेश,
1: केते बरमे काढ़त घड़िया रूप रंग के वेश,
0: केते कर्म भूमि में केते केते तू उपदेश,
1: केते इंद्र चंद सूर के

0: कर्ता परंग परम परमेश्वरं प्रोच पालं अच्छे दिय पे दिय नामंग कामंग तेरा जोर चाचरी छन चले हैं पीत हैं पे हैं
1: प्रभु है अजू है आदेश है अपेश है
0: भुजंग पर्यात छंद गदे बदे नंदी स्वरूपे नमस्त्वं नरनाथे नमस्त्वं परमाथे
1: नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं
0: नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग अपाले
1: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
0: नमो राजे राजे।

0: नाम काम बहीन पे कदम न जाहे। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक,
1: खेला खेल खेल अनंत को फिर एक।
0: देव बेव न जाने जे बेद और कतेब,
1: रूप रंग न जा पाछू जानिए के
0: तात्मात्मा जात जा।

0: भुजंग परे हाथ छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चात्री चंद ना सत्रा ना मित्र ना परमंग ना पित्रा
1: कर्मंग ना काए अजन्म गा जाए
0: ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
2: भगवती चंद्र प्रसाद करते कि आज देश की आ

0: सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी की सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
1: के सर्वत्र जैसे के सर्वत्र पैसे
0: सर्वत्र माने सदैव प्रदाने
1: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे
0: के सर्वं कलीमे के परमंग फहीम
1: के आकल अलामे के साहेब कलामे
0: उसनल वजू है तमाम
1: हमें सुलसना में सली खुदमदा में।

0: जात बेचारे
1: एते पे तो कहां पे भूप पर अंत को ना गई पाए पलारे
0: जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुण गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: भूत भविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे
1: श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे
0: आदम दान संजम ने मने
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के पेखे
0: जतीजत तार सबे सब चार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन भूप एक रति बिन एक न लिखे
0: सिपा दुरंत दुबासो साज सना दुर्जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंखा लेना हलेंगे
0: वासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बड़े आर बिचारे सार की तार बचैया
1: तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: सारे ग्रान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया
1: साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेसो एक दिवैया।

0: समझ पाएंगे
1: सात समूह पर सन फिरे जब सतर समय अब लोग जपेंगे
0: मानवेंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोटि स्नान गजा दिख दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: विसन सजी पदांत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर कहना दे तरेंगे
0: साबयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो पग ध्यान लगायो
1: नाथ प्रियो लिए सात समुंदर लोग गयो पर लोग गवायो
0: सास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे बैस बतायो
1: साज को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन

0: नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
1: सच्चा नाम मेरा आधारो
0: सच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां
1: कर सांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां
0: सदा कुर्बान कीता गुरवितो जिस ते वड़ियाइयां
1: कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो
0: वाजे पंच बत कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
1: पंच दूत दुआस कीते काल।

0: की फतेह।
1: एक चलो चलो
0: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसमी तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संत वार गनीम नगारे
2: पशु पशु नग नाग नरादव सर्व समय सम को प्रतपारे
0: भोगत है जल में थल में पकल भोगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर विचारे
2: दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत ना हारे
0: दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे
2: खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद मा पद बेरक देव फेर उचारे
2: रोजी ही राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोजी नटारे
0: कीट पतंग करंग पियंगम भूत भविक भवान बनाए
2: देव अदेव खपे अनमेव पेव लख्यो प्रम सो परमाए
0: पेल प्राण कुतेव प्राण हसेव थके कर हाथ न आए
2: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पित पत
0: आद अनंत अगाध अद्वैक सो पूत पवेख पवान अभय है
2: अंत विहीन अनात्म आप अदाग अदोग अछिद्र अछे है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु वह है
2: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापते है
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पय
2: देव विहीन स्नेह समोतन ने बिरकत अगे अछे।

0: एक चलावत काव तो तन एक न लागन पावे।
1: रागत है अपना कर दे कर पाप संभू न पेट न पावे।
0: और की बात कहाँ कह तो सो पेट की पेट पर पीट बचावे।
1: याच पियांग सो दान देव पेव तुम्हें सभी करते आवे।
0: तुम आकाश पताल रसातल जच पुचंग सबे से न्यावे।
1: पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेति नेता वेद बतावे।
0: खोज सके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ नावे।
1: नारद से चतुरान से रुमनारक से सब हूँ मिल गायो।
0: वेद कते ना पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ नायो।
1: पाए सके नहीं पार माप सिद्ध सनात सनातन त्यायो।
0: ध्यान तरो तह को मन में जय को अमितोज समय जगशायो।
1: वेद पुराण कुतेव कुरान अपेद नृपान समय पच हरे।
0: पेद न पाए सक्यो अनपेद को खेदत है अनछेद पुकारे।
1: राग न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न संग तिहारे।
0: आद अनाद अगाद अपेक अद्रैक जप्यो दिन ही कुलतारे।
1: तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोधन महामृत तारे।
0: देश विलियो कर पेस्त पोदन केस तरे न मिले।

0: ओंकार सतगुर प्रसाद तप प्रसाद चौपाई पंडवो आदि कंकारा जब थल मयल की उपसारा
1: विगत विनाशी लोक चतुर्दस ज्योत प्रकाश
0: हास कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सिर जाना
1: सब कट कट के अंतर जामी
0: अलख रूप चयन पेखा राग रंग जय रूप न रेखा
1: सबूते न्यारा आदि पुरख दया।

0: जो जुज मरो।
1: तन जियो तै को जग में मुक्ते हर चित्त में जुद बिचारे।
0: नित नित रहे जस नाम चढ़े पव सागर तारे।
1: धीरज ताम बनाए तन बुत

0: कट कट बने।
1: जिस मृत उपकर आट है, जिस मृत जम पिछु नाक है।
0: जिस मृत होत सुके हरे, जिस मृत डूबत पाहन तरे।
1: संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण।

0: हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव सान सद्बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सत पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा
0: गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा
1: गुरुदेव संगत ब्रह्म

0: आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ।
1: मन बिलास पए साहिब के अचरज देख वडाई।
0: हर सिमर सिमर आन

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दया वै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वण छकिया देख चलाई। तेग वाही दे किन डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेठ सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां। चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाए। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान धन सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान।

तत विचार जहै मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर

जैत श्री महला चौथा जिन हर हिरदय नाम न बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा

सेवी अहने सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु कै जनम मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसं कुरसं चटियै तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै सजन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठिया।

गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पापां दे समुंदर विच जदों तूफान आउंदे ने मानवता दे बेड़े नूं पार जाण तों रोकण लई झूठ फरेब कप दीआं छलां अपने जौहर जरूर विखाउंदियां ने। सूबा सरहंद ने माता गुजरी समेत दोवें छोटे साहबजादियां नूं एक ठंडे बुरज विच कैद कर दिता। उस बुरज दे विच जिस नूं अज भी लोकी चंडाल बुरज दे नां नाल जाणदे हन। सारी रात दादी माता जी बच्चियां नूं अपनी बुक्कल दा निग दिंदे रहे। कुछ दिनां पिछों सूबा सरहंद ने निक्कियां जिंदां नूं अपने दरबार विच बुला के इस्लाम कबूल करन लई कहा। इनकार बदले तलवार ना कतल करन दी धमकी भी दित्ती। दादी मां दे बोलां नूं चेते करके दशमेश दे राज दुलारियां ने सूबे नूं जवाब विच कहा कि असीं शहीदां दे सरताज उस दादा दे पोते हाँ जो हिंद दी चादर बन के कुर्बान हो चुके ने। उस पिता दे लाल हाँ जिस दियां रगां दे विच जो दे बहादुर दा खून दौड़ रहा है। जे साडे प्राण जांदे ने तां चले जाण, पर असीं अकाल दे हुक्म दी उलंघना करके देश अते धर्म दे दुश्मनां दा दीन अख्तियार करन लई हरगिज तैयार नहीं, मरन लई सदा तैयार हाँ। सूबा सरहंद खरियां खरियां सुन पिछों गुस्से विच आ के जब दोवां दा सिर तलवार नाल कलम करन दा हुक्म देण लगा तां नाल ही सूबा सरहंद नूं कोई दैवी आगमी आवाज़ सुनाई दित्ती कि ए बेशक निक्कियां जिंदा ने पर बेटे कलगी तरदे ने, इन्हां ईन किसे दी मननी नहीं ना।